सरकार से सरकार इसलिए सुधार दिने आर्थिक सुधार का अजेंडा बजाने से सरकार दिल्ली प्रवीण ने लेकिन भाई को खबर छापी एक उसे आर्थिक कारोबार करने के लिए सरकार को आश्वासन या उद्योग खोले विचार मात्रा दिए

0: किशोर रगत कमी अर्थात रक्तअल्पता बढ़ना रक्तअल्पता विलसीनता कटकरण आर्थिक कमी पढ़ाई में ध्यान दीजिए मैंने समस्या रक्तअल्पता में बचत लाख काई साग पात दाल गुड़ियारा आड़ा मच्छी शिकार फल फूल आदमयुक्त खाना नियमित रूप खाई जंक फूड कम करी संतुलित खाना खाना लीजिए स्वस्थ किशोरी जो स्वस्थ भविष्य का आधार हो रेडियो गुरुवार को सहकार में स्वास्थ्य अकादमी बर्दिया ऐसी जनई मंत्रालय सर्विस
1: खाना
0: रेडियो गुरुबाबा एफएम को सहकारी स्वास्थ्य

0: देखाउ स्वस्थ बच्चा उज्यालो भविष्य स्तन पार गरौ स्वास्थ्य एवं
1: कार्यक्रम स्वास्थ्य कार्यालय कोर्टद्वारा

रास्ता की तरफ, जो कि यह ऐसा था कि जो रास्ता यह सीखी तो वह रास्ता नहीं है, वह यह फिल्म बहुत बढ़िया चीज है। आप फिल्म बहुत प्रकार होती है।

वित्तीय पूर्णा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सत्यवंश अनुसंधान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मित्रका साथ साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा

0: Paris will go on. And that really agreed that subject on the procedural position of work. And I think what's the idea of this government is that work and absolutely wasn't so much for fans out of that one.
1: Radio Kolkata FM को सहकारी में स्वास्थ्य कार्यक्रम और पर्यटन करने की योजना की संदेश।
2: नमस्कार, मेरा नाम रंजन चौधरी, मास्टरी में तंदरा और अनुभव करता काम कर दिया। मैं प्रॉपर्टी जाने के लिए उद्योग मॉडल बनाकर राष्ट्र स्तर पर सुपर किसी का उत्सर्ग प्राप्त कर रहा हूँ। हम लोगों को प्रॉपर्टी जाने के लिए उद्योग मॉडल Thank you.

0: Radio Gruava FM Duarte, Jani Pozari Sandis.
1: स्वास्थ्य सेवा में प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारी प्रतिबद्धता का थी वैवाहिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वस्वत रूप में खेती यहाँ को स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक तरलता कौशल्य अस्पताल बास्करी में संपर्क करना आर्थिक अनुरोध कर दी

0: पटकला का साग पात दाल गुड़ी गेड़ा आरा मच्छी शिकार और फल फूल आयरन युक्त खाना नियमित रूप में खाई। ड्रैगन फ्रूट का उपज संतुलित खाना खाना रोजी स्वस्थ किसी जो स्वस्थ भविष्य का आधार हो। हमारे गुरुवार फूल को सहकारी में स्वास्थ्य कार्यालय बर्दिया से जनहित में जारी संदेश। खाना 6 महीना का अनिवार्य शुरू करिए। अन्न गेड़ागुड़ी साग सब्जी फल फूल सहित पोषण पूरक खाना ने बच्चा तंदुरुस्त बनाए। पूरक खाना संगसंग 2 वर्ष स्तनपान जारी धरी।
1: रेडियो बाबा एफएम का सहकार स्वास्थ्य कार्यालय प्रक्रिया ऐसी जनहित में जारी संदेश।
0: आमाको दूध बच्चाको पहिलो औषधि हो। जन्मेको 1 घण्टा भित्र अनिवार्य स्तनपान शुरू गरौं। 6 महिनासम्म आमाको दूध मात्रै खुवाऊ। स्वस्थ बच्चा उज्यालो भविष्य। स्तनपान गरौं स्वास्थ्य बचाऊ।
1: रेडियो प्रभाव एफएमको सहकार्यमा स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

जय प्रकाशा संध्या सवा छ बजे हमार संदेश अपने स्वागत बाबू कुमार हमारे संदेश पर दिया कर साथ ही राजा

contagi per Sangoli e qualcosa sa già sempre la nazione a Cretà si va a provincare il portiere per pure che c'è proprio casa posti con la sala tra Mottei che da Xapusa ma a Vosse tra di Carlo di Cretà tra fatto con la sala tra di Cretà partiamo così la zona di Vagia Samuti vorrà potuta salvare la sua sassi obiettivo di stato in samanti Italia in Zeta Guardi al pasto di Puzzama di Guardi Cieto Antargat che va a un paio di anni quadra far potuta smiti Antargat Samuti vorrà potuta salvare la sua sassi in Zeta Sotto si va a sua santa fa obiettivo di stato in samanti Italia in Cordano Corriaco Se vi mati da Tama di Guardi Cieto Antargat Samuti vorrà potuta salvare la sua sassi in Zeta di calmare di sede a l'Italia su sassa parvosità portata e torbicchia un san sassa in catà a fine che non sta per capire massaggi che non fai gira a l'Italia perché era stia di punza panzoria post corrente l'attimale la vozza dai concorso collettiviti di tal cari usanavo panzoria can a sassa in zan in panama su l'ultima danza a nel metto chilia arti carbaro पनवाकर व्यवस्था पर कसर को कार्य ना बेटी का शासन पारदर्शिता उत्तरदायी हो जो बातें ही था क्राइम पर पड़ा बटर बाटर रेंजर रावत आमदानी खर्च का व्यवस्थित अभिलेखीकरण नियमित लेखा परीक्षण आर्थिक पारदर्शिता तथा स्वास्थ्यगत कमजोरी सुधार में विशेष ध्यान देना वांछित करना संगठन उपभोक्ता को समान सहभागिता सुनिश्चित करते आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य निष्पक्ष को कानून सम्मत तरीके से संचालन करना वहां पर तालीम सहभागी उपलब्ध समूह का प्रभावकारी संचालन आर्थिक व्यवस्थापन तथा संरक्षण गतिविधि द्वारा तथा व्यवस्थित पूर्ति उपनाय प्रशासन क्षमता विकास मूलक कार्यक्रम प्रभावकारी रणनीति बाटो प्रति राष्ट्रीय निकुंज ठाकुर द्वारा प्रति कार्यक्रम मानचित्र कार्यक्रम पाटा भारत उपभोक्ता समिति का सचिव तपेन्द्र थापा लगायत सामुदायिक प्रमुख उपभोक्ता समूह पदाधिकारी तथा सदस्य तंत्र सहभागिता द्वारा आयोजित हुआ सामुदायिक प्रमुख का सुशासन प्रवर्तन संरक्षण व्यवस्था प्रभावकारी बनाए और सिंचिमता विकास मूलक कार्यक्रम निरंतर प्रतिहत बाटका जानकी गाउँपालिका में 1500 अस्पताल का भवन निर्माण गाउँपालिका ऐन आर्थिक वर्ष से अस्पताल संचालन पैखानी स्थान पर काम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराइला जना गाउँपालिका सदस्य सरपन खाक अनुसार अस्पताल संचालन में आयल पास सामान्य उपचार से मातृत्व तथा शिशु स्वास्थ्य सेवा समाप्त रात नेपाल गंथाए पड़ना स्थानीय अपाध्यता अंतिम निर्देश यही लेख ग्रामीण नागरिक उपन का समाज सुलभ उपन स्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराइना संग दसाई सराय न्यूनीकरण और जीवन स्तर सुधार मौके से उपन विश्वास व्यक्त करेगा प्रमुख प्रशासक अधिकारी परशुराम उपाध्याय महीना आर्थिक वर्ष में अस्पताल संचालन और सेवा विस्तार द्वारा पर्याप्त बजेट नियोजन पदक जानकारी बाट अस्पताल में से प्रारंभ प्रसूति सेवा संचालन करना स्वास्थ्य सेवा क्रम से विस्तार करना चला गया 2078 साल मार्ग में 11,44,00,000 रूपया का लागत में बनसू हिरक अस्पताल का भवन हिम सगर माथा अंतर्जी भी भवन निर्चित हो गांवपालिका को प्रवक्ता टीकानाथ यादव के अनुसार 7,263 घर धूरी हो 46,536 जनसंख्या वाले जानकी गांव पालिका के बासिंदा प्रसम समाज पूर्वक लागे नेपाल लगायत को ठावपूर्ण अवस्था रहना स्थानीय पदम बहादुर ठिकाबु दिनेश मौर्य अस्पताल संचालक संग प्रमुख स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पीना अपेक्षा व्यक्त करते दक्ष जनशक्ति और प्रभावकारी सेवा व्यवस्थापन में विशेष ध्यान दे गांव पालिका से हर्षी कर बांसुरी नगर पालिका बर्दिया का आर्थिक वर्ष 2083-84 का सेवा व कार्यकलाप संचित कोष में से व्यय बिना रकम विनियोजन करना खर्च अधिकार देना पंचानी अलग से नेपाल का संविधान का धारा 229 को धारा 2 बमोजिम बांसुरी नगर पालिका का नगर सभा ईएन
जन एन 2083 नगरसभामा विधायक समितिका संयोजक बलिराम चौधरी प्रस्तुत गरेर अंश सुनि।

सामाजिक विकास मंत्रालय का सचिव दिवाकर भंडारी प्रमुख प्रदेश पढ़ाई कार्यालय का प्रमुख परिणायक महानिदेशक भूपेन्द्र बहादुर खत्री VNFPA का स्वरूप व्यक्ति समृद्धि मिले कृष्णकारी स्वस्थ महासंघ लुम्बिनी प्रदेश का अध्यक्ष जीत कुमारी प्रकाश जिले गोपाल गांव पालिका का अध्यक्ष

संचालन महाअधिकार अधिकृत अजीत कुमार ठाकुर कार्यक्रम विधि प्रदेश का स्थानीय का जनप्रतिनिधि सरकारी कार्यालय का प्रमुख नागरिक समाज मानव अधिकार कर्मी तथा संसार कर्मी दान से सुंदरिया उनके पास को खबर पठाई बात अंतर्राष्ट्रीय समाचार को पाया तो सरकार लागू औषध नियंत्रण तथा रोकथाम प्रयाग छुट्टा विभाग की स्थापना करना तैयारी कर रहा लागू औषध नियंत्रण तथा औसत प्रसार के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का अवसर पर केंद्र मंत्रालय में आज आयोजित कार्यक्रम में पूर्ति गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठ और सिंपल पूजा वहां लागू औषध नियंत्रण और रोकथाम प्रयाग स्वयं और विश्व स्थानीय तौर पर काम होना भी एकत्र रूप में जागरूक कराए उप विभाग की स्थापना करना तैयारी सरकार स्पष्ट करवाट कि सचिव श्रेष्ठ राजवंश दुर्देश का सुधार तथा उपचार का लाभ पुनः

फिर किशोरी मुखर्जी मोहर रफत कमी अर्थात रक्तल पता के परवा रक्तल पता हुआ शेष पत्र पेट कराव लगना तो कोयला अनुभव की कमी ना हो पाए तो ध्यान दीजिए ना समस्या ना रक्तल पता मुझे बचत लाख काई साग पात दाल गुड़ी गिरा आरा मच्छी शिकार को फल फूल आयुक्त खाना नियमित रूप

कृषक के हजार कृषक परिवार आवंटन राष्ट्रीय कृषि गणना 2008 के अनुसार कुल खेती योग्य जमीन को 55%

加拿大嗰啲。我先喺度想問，我問大陸嗰啲人，佢哋咁沙沙口啊？Someone's in the bank, you sound like Sutana Network, CIN. Topayos, sound like Sutana Network, CIN, Kapilmata, Panikos, Lazar, Kavarsan, the Hunta, or a Paraki color. Possibly somebody Lagos and Franco Parkos and Caboli, Vitali, Parakan, Lago, and Havasakoreku, Sam Sadru, Tafakan, Pedro, Tarakasan, Samudaik Radio, Kasarakson, Akura, Nepali. आज लागू उसे दुर्घटना के बाद अब एक साल के साथ विरोध को अंतर्राष्ट्रीय दिवस का अवसर है कार्यक्रम में आयोजन अपने को लागू उसे नियंत्रण का लागी कानूनी प्रावधान का कार्यान्वयन को अवस्था विषय कंपनी का कार्यक्रम है स्वागत है अभी उत्तर प्रदेश बताया का हूँ आज लागू उसे दुर्घटना के बाद अब एक साल विशेष गरेर नेपालका कानून निर्माणमा देखिएका चुनौतीहरूका बारेमा र कानून कार्यान्वयनका बारेमा बहस हुने गरेका छन् जिल्ला जिल्लामा यो दिवस मनाइए तापनि लागू औषधको कारोबार र प्रयोगका घटनाहरू भने कमी आउन सकेको छैन

प्रवृत्ति मंत्रालय राजीव गरे महामंत्री आचार्य मनीष झा सागर धटा और गणेश कार्की पराजित करे सह महामंत्री पद एवं तर्फ हरि धटा और पश्चिम